0: कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी कहें। आइए दीवान खाना में चलें।
1: ये है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपके मेजबान हैं खलील शिराजी, वसीमा आबिद और खदीजा शाह।
2: प्रोग्राम दीवान खाना में तमाम सामईन को आदाब।
0: खलील साहब, आज आपको एक नई बात सुनाऊं?
1: जी जरूर बताएं।
0: आपको सुन के हैरत होगी और मुझे भी पहले पहल बहुत हैरत होती थी कि जापान में लोग गर्मियों में झिंगरों की आवाज से लुत्फंदोज होते हैं।
1: कौन सा झिंगर? वही जो हमारे यहाँ रात को घरों के अंदर शोर करता है, किताबों और कपड़ों को चाट जाता है, वही?
0: किताबों का दुश्मन बने वो भी झिंगर की एक किस्म है, लेकिन आज बुनियादी तौर पर हम जिसका जिक्र करेंगे उसे अंग्रेजी में सिकाडा और जापानी में सेमी कहते हैं। सेमी या जैमी, ये जो दरख्तों पे बैठता है, दरख्तों में घूमता फिरता है, अमूमन सुबह या फिर दोपहर के वक्त शोर मचाता है, चहचहाता है।
1: अच्छा, वो काला और शफाफ परों वाला सिकाडा?
3: जी वही, जापान का झिंगर। असल में जापानी लोग मौसमों के एहसास से न सिर्फ लुत्फंदोज होते हैं बल्कि उनकी कदर भी करते हैं।
0: जी बिल्कुल दुरुस्त कहा खदीजा। और जापानी लोगों का ख्याल है कि झिंगर की आवाज़ सुनने से उन्हें बदलते मौसमों का एहसास होता है।
3: हाँ, गर्मी आने का एहसास, और जब झिंगरों की आवाज़ बहुत ज़्यादा आए तो इसका मतलब है कि असल गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, और अमूमन ये जुलाई के आखिर से सुनाई देना शुरू हो जाती हैं।
1: अच्छा, तो जो झिंगर है वो गर्मी की आमद का नकारा है क्या?
3: जी बिल्कुल, झिंगरों ने नकारा बजा दिया है खलील साहब। और कहा जाता है कि जापान में कमोबेश 32 अकसाम के झिंगर पाए जाते हैं।
1: अच्छा, चलें तो आज आप उनका नाम ले लें, इस बहाने आपका इम्तिहान भी हो जाएगा।

0: अरे झींगा नामा, वसीमा ने शुरू किया था भाई, वही सुनाएंगी हमें।
1: हाँ जी हाँ जी, खलील साहब आपने झींगर की इकसाम में दिलचस्पी ली, इसका बहुत शुक्रिया। और अभी खदीजा साहबा ने बताया कि जापान में कमोबेश कहा जाता है कि 32 इकसाम के झींगर हैं। इन 32 इकसाम में से मैंने सिर्फ 6 के नाम बताने हैं, सारे नहीं बताने, क्योंकि कुल इकसाम का 96% हिस्सा उन टॉप 6 इकसाम पर मुश्तमिल है। और ये अकसाम मकामी जंगलात और मकामी इलाकों में पाए जाने वाले झींगरों की नुमाइंदा अकसाम समझी जा सकती हैं
2: जापान के अंदर।
0: अच्छा, इनमें जो है अबरा जेमी झींगर की तादाद जापान में झींगरों की कुल आबादी का तकरीबन निसफ हिस्सा है। जेमी झींगर जापान भर में पाया जाता है और रोजमर्रा जिंदगी में कमोबेश हर एक से इसका वास्ता पड़ता है। तो आइए इसकी आवाज सुनते हैं।
1: जी ये था अबरा जैमी। तो बाकी इकसाम हैं नीनी जैमी झींगर, हिगुराशी जैमी झींगर, सुकुसुकुबोशी जैमी झींगर। खदीजा सही बोला मैंने?
0: हाँ मेरे ख्याल में।
1: और कुमा जैमी झींगर और फिर मिनमिन जैमी झींगर।
2: चले इसी बहाने आपकी याददाश्त का इम्तिहान हो गया।
0: अच्छा वसीमा, ये जो अभी आपने मिन मिन जेमी जिगर कहा, इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आने का मतलब होता है कि असल गर्मियाँ शुरू हो गई और उमूमन ये जुलाई के आखिर से सुनाई देना शुरू होती हैं। और अब हम मिन मिन जेमी जिगर की आवाज़ सुनेंगे।
2: हाँ, जब तक बारिशों का मौसम था तब इतनी गर्मी नहीं थी। अब जुलाई का तीसरा हफ्ता जब से शुरू हुआ है तो गर्मी उरूज पर है।
0: जी, और जो सुकुसुकुबोशी जेमी झींगर है उसकी आवाज का मतलब समझा जाता है कि अब खिजा आने वाली है, यानी मौसम तब्दील होने वाला है।
1: अच्छा सामिन, सुकुसुकुबोशी जेमी झींगर जो है जापान भर में अमूमन पाया जाता है सिवाय ओकिनावा के। ये शहरी इलाकों से लेकर नशेबी पहाड़ी इलाकों तक में आबाद है और दुनिया भर में अपनी बड़ी पेचीदा सी मौसीकी वाली चहचहाहट के लिए जाना जाता है। और अक्सर दिन के वक्त चहचहाता है, वो नहीं है जो झींगर रात को तंग करता है, किताबें खाता है, वो नहीं है। अच्छा, ये कई अकसाम के जंगलात में पाया जा सकता है, बागात में पाया जा सकता है और चेरी और पर्सिमन यानी जापानी फल के दरख्त पे भी ये आ जाता है। तो आइए इसकी भी आवाज़ सुने। अरे प्यारी सुहानी आवाज़ थी। वैसे खदीजा, बरे सगीर के झींगरों की आवाज़ से कितनी मुख्तलिफ आवाज़ है। हमारे यहाँ तो झींगर ज़्यादातर ये दो किस्म की आवाज़ें निकालते हैं, और दूसरी है ना।
0: किसी पर लगता है जापानी जैमी झींगर की आवाज़ का तर्जुमा कर दिया आपने। अच्छा वैसे वसीम, आपकी परफॉर्मेंस हमने सुन ली। खली साहब, आप भी अब जापान में मुकीम हैं, तो हमें अब ये सुनाइए कि यहाँ क्या कुछ देखा और कैसा पाया सब कुछ।
2: मैंने आपकी झींगर कहानी तो सुन ली, अब जो दास्तान मैं सुना रहा हूँ उसका उन्वान है जापान जो मैंने देखा।
1: अरे वाह, इस सिलसिले में आज हम क्या सुन रहे हैं?
2: ये किस्सा है बिजली और पानी के कनेक्शन का।
0: यानी कि घर लेने वाला आपका मिशन मुकम्मल हो गया और अब बिजली और पानी के कनेक्शन का मिशन दरपेश है आपको।
2: जी बिल्कुल, टोक्यो में आखिरकार किराए का एक छोटा सा मकान ही मिल ही गया है। दिल ने सुख का सांस लिया, लेकिन अगले ही लम्हे प्रॉपर्टी एजेंट ने एक ऐसा जुमला कहा कि सांस वहीं अटक गई।
1: वो सुख वाली
2: बिजली और पानी के कनेक्शन उसने कहा कि आपने खुद लगवाने हैं। अब सच पूछे तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। वजह यह नहीं थी कि कनेक्शन लगवाने थे, वजह यह थी कि चंद महीने पहले पाकिस्तान में बिजली का कनेक्शन लेने का तजुर्बा अभी तक हाफजे पर ऐसे सब था जैसे किसी सरकारी दफ्तर के रजिस्टर पर लगी मोहर।
1: अब एक और मोहर दरपेश आ गया।
2: बंदा एक खिड़की से दूसरी खिड़की, फिर तीसरे कमरे, और फिर जवाब मिलता साहब अभी मीटिंग में है, और आखिर में किसी न किसी फाइल को पहिए लगाने की गैर एलानिया मगर मारूफ रिवायत,
0: जिस रिवायत का बेड़ा गरक हो।
2: अब सो मैं दफ्तर में बैठा यही हिसाब लगा रहा था कि जापानी जबान भी अभी पूरी तरह नहीं आती, यहाँ किस किस दफ्तर के चक्कर लगाऊंगा, किस से दरखास्त करूंगा और किसको अपनी बेबसी समझाऊंगा।
0: समझ गया जी। वैसे इस जगह आपको कोई

0: कंसर्ट के साथ भी अपने फ़न का जादू जगाया। अपने रिकॉर्डिंग और परफॉर्मेंस कैरियर के अलावा वो मुख्तलिफ फ़नकारों और मौसीकारों के साथ गाने लिखने, प्रोड्यूस करने और तआवुन में भी सरगर्म हैं।
1: अच्छा, अपने डेब्यू की 30वीं सालगिरह मनाने के बाद काज़ुयोशी साइतो एक फ़ाल और मुतनव्वो कैरियर जारी रखे हुए हैं। वो मुसलसल मौसीकी के नए अंदाज और तख्लीकी तआवुन को दरियाफ्त कर रहे हैं।
0: उरादा साहिबा के मुताबिक आज सुनवाया जाने वाला गीत सेमी यानी झिंगर उदास गर्मियों का गाना है, जिसमें एक आदमी गर्म मरतूब दिन घूमता है और इसके साथ तन्हाई और कुछ खोने का बढ़ता हुआ एहसास उसे होता है। झिंगर शदीद धूप और गायब होते हुए साए जिंदगी की नापायदारी और इस एहसास की अलामत है कि कोई अहम शख्स चला गया है।
2: इस गीत के बोलों में मरतूब मौसम और खिड़की से चिपके एक झिंगर का जिक्र है जो चहचहा रहा है, तो आइए सुनते हैं।

0: जी सामिन, काजुयोशी साइतो का गीत सेमी यानी झिंगर हमने सुना, आप सबको कैसा लगा? अब फिर झिंगर की कुछ बातें करेंगे।
1: हमारे अमले के जापानी रुकन युकी यासुमोतो बता रहे थे कि मगरबी जापान के झिंगर की आवाज़ जापान के मशरकी हिस्से के झिंगरों से कुछ मुख्तलिफ होती है।
0: असल में जो अपने हमारे यासुमोतो साहब हैं, उनका आबाई जो मकाम है, आबाई शहर समझ लें, वो मगरबी जापान का हिरोशिमा है ना, तो वहीं की बातें बताएंगे ना। अच्छा, मुझे उन्होंने बताया कि बचपन में जब वो हिरोशिमा में थे तो उन्होंने सिर्फ कुमा जैमी झिंगर और अबरा जैमी झिंगर और नीनी जैमी झिंगर की आवाज़ें सुनी थी।
2: युकी यासुमोतो तो कहते हैं कि उन्होंने हिरोशिमा में मिन मिन जैमी झिंगरों की आवाज़ कभी नहीं सुनी, लेकिन वसीमा मैंने तो टोक्यो में काफ़ी सुनी है।
0: है ना, मेरी तो ख्वाहिश है, तमन्ना है और दुआ है कि खिजा की नवीद सुनाने वाले सुकुसुकुबोशी झिंगर भाई का मौसम जल्दी जल्दी आ जाए।
1: हाँ, मैंने सुना है कि टोक्यो में जुलाई के वस्त से अगस्त के वस्त तक सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो अभी जरा सांस लीजिए, कुछ बर्दाश्त कीजिए।
0: वाह, आप भी शायर हो गए। अच्छा, इस शेर से मुझे जापान की शायरी की सिंफ हाइकू याद आ गई।
2: जी बिल्कुल, हाइकू दरअसल फितरत की शायरी है, जो फितरत में मौजूद छोटी छोटी हयातियात यानी मसलन फूल, परिंदे या हशरातुल अर्ज वगैरह पर रोशनी डालती हैं। बुनियादी कवायद के मुताबिक 5-7-5 की तरतीब में 17 हरूफ में लिखी जाने वाली हाइकू में मौसम का एक इस्तियारा या लफ्ज़ भी शामिल होता है जो साल के वक्त मौसम की निशानदेही करता है।
1: तो मौसम और झिंगर का तो मेरे ख्याल में चोली दामन का साथ है, तो क्या झिंगर के मौसम पर भी हाइकूस लिखी गई हैं?
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, दुरुस्त समझे, जवाब दुरुस्त है। मौसम गर्मा या खिजा की तर्जुमानी के लिए झिंगर पर भी हाइकू मौजूद हैं, और जापान में हाइकू के मशहूर शायर बल्कि हाइकू के बानी शायर मात्सुओ बाशो की एक जापानी हाइकू है, शिजुका साया इवानी शिमी इरु सेमी नो कोए। इसका उर्दू तर्जुमा है, हर सू खामोशी उस पर चट्टानों को छेदती

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: यह है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का आपके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। उगते सूर्य के देश से सबसे पहले स्वीकार करें अपनी सखी शांग्रीला जैन का कोनिचिवा, नमस्कार और आदाब।
1: सभी दोस्तों को रंजना सिंह का भी कोनिचिवा नमस्कार। फिर आया एक नया सप्ताह और हम आ गए लेकर आपके पत्रों के उत्तर और जापान के बारे में कई जानी अनजानी रोचक बातें।
0: उफ रंजना जी, इस गर्मी ने तो हाल बेहाल कर रखा है। काश हवा करने के लिए कोई पंखा मिल जाए।
1: अरे आपका हुक्म सर आंखों पर, आपने मांगा और हाजिर है ये पंखा।
0: अरे वाह क्या बात है, फोल्डिंग जापानी पंखा। एक समय था जब गर्मियों में ये अक्सर सभी के पास दिख जाता था।
1: समय के साथ थोड़ा बदलाव जरूर हुआ है। नए जमाने में युवाओं के हाथों में इन सुंदर पंखों की जगह ले ली है छोटे से इलेक्ट्रिक फैन ने।
0: सही कहा, लेकिन मुझे तो ये फोल्डिंग जापानी पंखे आज भी बड़े ही सुंदर और सुविधाजनक लगते हैं। तह करके ये आसानी से पर्स में आ जाते हैं और चार्जिंग का भी झंझट नहीं। वैसे रंजना जी, जानती हैं फोल्डिंग जापानी पंखों जिन्हें सेंसू कहा जाता है, उनका इतिहास काफी पुराना और रोचक है।
1: जी, कहीं पढ़ा था कि ये फोल्डिंग पंखे जापान में करीब 9वीं शताब्दी तक बनने शुरू हुए थे। शुरुआत में तो ये सिर्फ 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 सेंटीमीटर लंबी लकड़ी की पट्टियों में एक सिरे पर छेद करके और उन्हें वहां बांध कर बनाए जाते थे, जो खुलने पर अंग्रेजी के वी अल्फाबेट का आकार लेते थे।
0: बाद में इनका आकार हाथ में हिलाने लायक छोटा हो गया था, लेकिन उससे पहले लकड़ियों की पट्टियों से बने इन पंखों को कमरे में सजावट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इन पर खूबसूरत चित्रकारी भी की जाती थी। फिर जब इनका आकार छोटा हुआ तो ये कुलीन वर्ग के लोग इससे हवा करने के साथ ही आम जन से अपना चेहरा ढकने और शाही दरबार की महत्वपूर्ण बातों या कविता लिखने के लिए भी इस्तेमाल करने लगे।
1: वाह क्या क्या अनूठे उपयोग थे। पंखों को नोटबुक की तरह इस्तेमाल भी किया जाता था। वहीं बीतते समय के साथ इनकी खूबसूरती बढ़ती गई। लकड़ी की पट्टियां एकदम पतली और नाजुक हो गई और उन पर कागज या कपड़ा चिपकाया जाने लगा जिस पर सुंदर चित्रकारी की गई होती है और खास तरीके से इनकी तह की जाती थी। 11वीं सदी तक तो ये अभिजात वर्ग की महिलाओं का फैशन स्टेटमेंट बन गया था, उनके पोशाक का अभिन्न हिस्सा।
0: और हाँ, गर्मियों में ये हमारे पर्स की जरूरी सामग्री भी है। देखिए, जापान की पारंपरिक मंच कला नो और काबुकी तथा नृत्यों में भी इनका खूब उपयोग किया जाता है। पंखा हिलाकर हाथों और कलाइयों की अदा को और बढ़ाया जाता है, साथ ही इनसे कलाकार अपने भाव भी अभिव्यक्त करते हैं।
1: यानी एक अदना सा पंखा जिसके अनगिनत उपयोग।
0: बिल्कुल सही कहा, गुस्सा दिखाने के लिए पंखा झटक दो और प्यार दर्शाने के लिए धीरे से कलाई को घुमा दो। वैसे भारत जैसे गर्म देश में भी हाथ पंखों का लंबा इतिहास है। हर प्रांत में इन पर कढ़ाई और सजावट की अलग अलग शैली होती है।
1: तो मित्रों, आप हमें बताइए, क्या आपके यहाँ आज भी हाथ वाले पंखे इस्तेमाल होते हैं और ये किससे बनाए जाते हैं?
0: आपके जवाब और हो सके तो आपके यहाँ के पंखों की तस्वीर का हमें इंतजार है।
1: जी, इंतजार तो श्रोताओं को भी है अपने पत्र सुनने का।
0: तो चलिए बिना देर किए लेते हैं ये पत्र जिसने लिखा है ओडिशा के सिंगा से। नाम तो आप समझ ही गई होंगी, हमारे नियमित श्रोता सुरेश अग्रवाल ने। लिखते हैं 5 जुलाई को प्रसारित चेरी के देश से कार्यक्रम के अंतर्गत जापान में सुख शांति अमन और विश्व कल्याण की कामना के साथ मनाए जाने वाले ताना बाता उत्सव के संबंध में प्रस्तुत जानकारी अत्यंत रोचक, ज्ञानवर्धक और हृदयस्पर्शी लगी। इस पर्व की परंपराओं, उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा मानवता के लिए उसमें निहित मंगल कामनाओं से परिचित होकर मन सचमुच पुलकित हो उठा। आज विश्व का एक बड़ा भाग विभिन्न प्रकार के संघर्षों, युद्धों और अशांति से जूझ रहा है, तो ऐसे में ताना बाता जैसे पर्व का संदेश और भी अधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है। हमारी भी यही हार्दिक कामना है कि दुनिया से वैमनस्य और हिंसा का अंत हो तथा ये सुंदर पृथ्वी सभी के लिए प्रेम, सौहार्द, शांति और भाईचारे का सुरक्षित एवं सुखद बसेरा बने। कार्यक्रम के समापन पर ड्रीम्स कम ट्रू समूह द्वारा प्रस्तुत गीत भी अत्यंत मधुर, कर्णप्रिय और मन को छू लेने वाला लगा। जानकारी और संगीत का यह सुंदर समन्वय कार्यक्रम को और भी यादगार बना गया। श्रोताओं के लिए प्रत्येक सप्ताह इतनी सुंदर, ज्ञानवर्धक और आत्मीय रेडियो चौपाल सजाने हेतु आप सभी का हार्दिक धन्यवाद एवं साधुवाद।
1: सुरेश जी, हर सप्ताह बिना नागा पत्र लिखने के लिए हृदय से आभार।
0: सचमुच जितना इंतजार श्रोताओं को अपने पत्र सुनने का होता है ना, उतना ही इंतजार मुझे सुरेश जी की विशेष टिप्पणी का होता है। रंजना जी, इस साल ताना बाता के अवसर पर आपकी क्या मनोकामना रही?
1: मेरी मनोकामना तो वही है जो आज सारी दुनिया मांग रही है कि जल्द से जल्द ये युद्ध समाप्त हो और पूरे विश्व में शांति आए। साथ ही ये भी इच्छा है कि मैं मरते दम तक स्वावलंबी रहूं।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: और आप बताइए, आप क्या मांगती हैं?
0: देखिए, चेरी के देश से कार्यक्रम के प्रस्तोता की क्या इच्छा हो सकती है, बस यही ना कि ज्यादा से ज्यादा श्रोता मित्र कार्यक्रम सुने और बड़ी तादाद में हमें पत्र भी लिखें।
1: जी हाँ, लंबे चौड़े पत्र ना सही, 2-3 लाइनों में अपनी प्रतिक्रिया तो अवश्य ही दी जा सकती है।
0: बिल्कुल, पत्र लिखने की प्रक्रिया को हमने आपके लिए आसान भी कर दिया है। बस वेबसाइट खोलिए और होम पेज

0: पर सबसे ऊपर बैनर पर लिखा है यहाँ क्लिक कर संदेश भेजें। साथ ही कार्यक्रम के विवरण में भी यही लाइन लिखी है, जिसे क्लिक कर आप तुरंत संदेश भेजने वाले पन्ने पर जा सकते हैं।
1: जी हाँ, ध्यान रखें कि संदेश भेजने के लिए अब बस यही एक लिंक है।
0: याद रखें, हमसे पूछे कि पन्ने पर भेजे संदेश और प्रतिक्रियाएं अब हम चेरी के देश से कार्यक्रम में शामिल नहीं कर सकेंगे। हमारा आपसे अनुरोध है कि कृपया हिंदी सेवा के लिए कोई संदेश या प्रतिक्रिया हमसे पूछे पन्ने के माध्यम से ना भेजें। अगर आपने अपने कंप्यूटर पर उस लिंक को सेव कर रखा है तो उसे डिलीट करके नई लिंक को अपनाएं।
1: अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं उत्तर प्रदेश में बांदा, जहां से हमारे एक पुराने श्रोता संतोष कुमार सोनी लिखते हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपको बता देता हूं कि मैं आपका बहुत पुराना श्रोता हूं। आपको याद है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप मेरे पुराने पत्र देख सकते हैं जो आपके पास होंगे। वर्ष 1999 से 2011 के बीच मैंने रेडियो पर आपको नियमित सुना। आपसे कई बार बातचीत हुई। बस आपसे अनुरोध है, यदि आपके पास सुबोध जापानी की कोई सामग्री हो तो भेज दीजिए।
0: संतोष कुमार सोनी जी, एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा परिवार में आपका पुनः स्वागत है। और देखिए ना, हम अपने श्रोताओं को तो हमेशा याद रखा करते हैं, पर श्रोता मित्र ही इतने साल के लिए हमसे दूरी बना लेते हैं। इतने बरस कहाँ व्यस्त रह गए, सब खैरियत तो थी ना?
1: सही कहा, हम बिना रुके निर्बाध रूप से लगातार सालों से प्रसारण करते आ रहे हैं।
0: जी, पिछले साल तो हमने जापान के हिंदी भाषा में प्रसारण की 70वीं वर्षगांठ भी बनाई। इस अवसर पर आयोजित विशेष प्रसारण सुने क्या आपने संतोष जी? और जहाँ तक बात जापानी भाषा सिखाने की पुस्तक की है, तो अब देखिए पेपरलेस का जमाना है, आपको ये पुस्तक वेबसाइट पर मिल जाएगी। पठन सामग्री के साथ ही इसके ऑडियो भी उपलब्ध हैं, आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और जब चाहें पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। आपके मित्र हों या बच्चे, हर कोई इन्हें अपने डिवाइस पर निशुल्क डाउनलोड कर सकता है।
1: पत्रों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले नोट कर लीजिए हमारी फ्रीक्वेंसी।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्ट वेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।
0: मित्रों, कार्यक्रम चेरी के देश से में आपका फिर स्वागत है। रंजना जी, वैसे तो गर्मी में बाहर निकलना मुसीबत मोल लेने जैसा है
1: जी।
0: लेकिन जापान में गर्मियां आते ही हर जगह मात्सुरी और तरह तरह के मजेदार आयोजन होते हैं। देखिए ना, 7 जुलाई को वेबसाइट पर एक मस्ती भरी वीडियो डाली गई, आपने देखी क्या?
1: नहीं, मैंने तो जापानी कंपनियों में भारतीय कामगारों के बारे में वीडियो देखी
0: जी। उसमें भी काफी महत्वपूर्ण जानकारी है, लेकिन मैं जिस वीडियो की बात कर रही हूँ उसमें लोगों ने लकड़ी के टब में बैठकर तप्त कुंड में छोटे छोटे चप्पुओं की मदद से दौड़ लगाई।
1: अरे वाह,
0: लोगों की क्या मस्ती दिख रही है, कई लोगों की टब तो उलट भी गई। जानती है, शिजुओका के इतो शहर में 7 दशक से भी पहले से ये दौड़ का आयोजन किया जा रहा है।
1: अरे वाह, फिर तो जरूर देखनी पड़ेगी। मित्रों, आप भी देखिएगा। और हाँ, 21 जून को प्रसारित चेरी के देश से कार्यक्रम के तहत जापानी योग साधिका और वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता मीनाक्षी मियोको के साथ हुई भेंट वार्ता की वीडियो भी जारी हो चुकी है। वीडियो में आप उनकी योग यात्रा से जुड़ी तस्वीरें भी देख सकते हैं।
0: इस वीडियो की लिंक फेसबुक पर भी डाली गई है, जिस पर मोनिता मिधा की टिप्पणी है, इस शानदार उपलब्धि के लिए मीनाक्षी मियोको जी को बहुत बधाई। आप कई साल से योग साधना कर रही हैं और बड़ों और बच्चों को योग सिखा भी रही हैं। योग से यकीनन शरीर लचीला होता है, लेकिन उसके लिए नियमित अभ्यास जरूरी है।
1: मोनिता जी ने

0: तेजी। ये कार्यक्रम आज के समय के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विषय पर आधारित है। ये नियमित श्रोता के रूप में मुझे ये प्रस्तुति ज्ञानवर्धक, संतुलित और सोचने पर मजबूर करने वाली लगी। आज पूरी दुनिया डिजिटल तकनीक पर तेजी से निर्भर होती जा रही है। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑनलाइन बैंकिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग जैसी लगभग हर डिजिटल सेवा के पीछे विशाल डेटा सेंटर काम करते हैं। आमतौर पर लोग इन सुविधाओं का उपयोग तो करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि इन डेटा सेंटरों को 2400 घंटे चालू रखने के लिए कितनी अधिक बिजली की आवश्यकता होती है और इसके कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किस तेजी से बढ़ रहा है। आपके कार्यक्रम ने इसी अनदेखे पहलू को बहुत सरल और प्रभावशाली ढंग से सामने रखा।
1: नीरज जी ने आगे लिखा है, कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि इसमें केवल समस्या का उल्लेख नहीं किया गया, बल्कि उसके कारणों और संभावित समाधानों पर भी संतुलित चर्चा की गई। यह बताया गया कि यदि ऊर्जा की बढ़ती मांग को स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से पूरा नहीं किया गया तो भविष्य में जलवायु परिवर्तन की चुनौती और गंभीर हो सकती है। साथ ही ऊर्जा दक्ष डाटा सेंटर, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से इस समस्या को कम करने के प्रयासों की जानकारी भी दी गई। इससे कार्यक्रम केवल चेतावनी देने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाधान की दिशा भी दिखाता है। मुझे ये भी अच्छा लगा कि कार्यक्रम में वैज्ञानिक तथ्यों को इतनी सहज भाषा में प्रस्तुत किया गया कि सामान्य श्रोता भी विषय को आसानी से समझ सके। यही रेडियो जापान हिंदी सेवा की विशेषता रही है। वर्षों से यह सेवा जटिल अंतर्राष्ट्रीय और वैज्ञानिक विषयों को सरल, विश्वसनीय और निष्पक्ष रूप से अपने श्रोताओं तक पहुंचाती रही है।
0: नीरज जी आगे लिखते हैं, आज जब पूरी दुनिया एआई और डिजिटल तकनीकों की ओर तेजी से बढ़ रही है, तब ऐसे में ये कार्यक्रम याद दिलाते हैं कि तकनीकी विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के कार्यक्रम विशेष रूप से युवाओं, विद्यार्थियों और तकनीक से जुड़े लोगों तक अवश्य पहुंचाने चाहिए। इस उत्कृष्ट और विचार उत्तेजक कार्यक्रम के लिए एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा की पूरी टीम को हार्दिक बधाई।
1: वाह नीरज जी, आपने इस कार्यक्रम में उठाए गए मुद्दे पर कितनी गहराई से विवेचना की है। वाकई आपका पत्र पढ़कर सारी मेहनत सफल प्रतीत होती है। मित्रों, जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है, वेबसाइट पर शोज पन्ने पर ये उपलब्ध है, जरूर देखें। अब कुछ टिप्पणियां फेसबुक से। ताना बाता पर डाली गई रील पर कई लोगों ने अपनी मनोकामना लिखी है। देवेंद्र भंडारी की कामना है, मैं लॉन्ग टाइम तक जापान में रहना चाहता हूं और विश्व में शांति चाहता हूं। वहीं दुर्गेश नागनपुरे और करुणा उप्रेती ने ताली की इमोजी से रील का स्वागत किया है।
0: इसी रील पर मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर का कमेंट है, आपके कार्यक्रम टेक्नोलॉजी, ज्ञान, विज्ञान से भरपूर और बेहद रोचक हैं। श्रोताओं के मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए सप्ताह में किसी भी एक दिन 30 मिनट का हिंदी गीतों का कार्यक्रम अवश्य शुरू करें। विजय जी, तारीफ के लिए शुक्रिया। जहाँ तक बात हिंदी गीतों की है, तो आप उन्हें भारत के विभिन्न प्रसारण केंद्रों से सुनी सकते हैं। हाँ, जापानी गीत हम आपको जरूर सुना सकते हैं।
1: तो आइए सुनते हैं ये जापानी गीत नात्सुगा किता, यानी गर्मियाँ आई। गायिका है वातानाबे मिसातो।

0: दोस्तों, इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा का यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अनुमति दीजिए अपनी सखी शांग्रिला जैन को
1: और रंजना सिंह को
0: सायनारा, नमस्कार।